हौ मैं बंध हर देवन हारा चरण कमल स्यों लागौने हो नानक की बेनंती है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तनाश्री महला नावा काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई रहाओ। पोहप मद ज्यो बास बस्त है मुकर माहे जैसे शाही तैसे ही हर बसे निरंतर कट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जाना एहो गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीना मिटे ना प्रम की काई। तनासरी महला नावा साधो एहो जग परम पुलाना राम नाम का स्मरण छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुतबंता ता कै रस लपटाना जोबन तन प्रभता कै मद मैं अहनस रह देवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन ता स्यो मन ना लगाना जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नावा ते जोगी को जुगत ना जानो लोभ मो माया ममता फनो जेह कट महे पछानाओ रहाओ। पर निंदा उस्तत न जाके कंचन लोह समानो हरक सोग ते रह अतीता जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दै दिस कौ धावत वा चल जाहे ठहरानो कौ नानक बिद को जो नर मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी

जन्म पाए कछ पलो ना कीनो ताते अदक डराओ मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच तरो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो पस ज्यो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हों पतत तरो तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगै नहीं दूरे हर रस चुग चुगै प्रभावै सरवर मैं हंस प्राण पत पावै क्या पग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबै मैल ना जाए रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ पै निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे सरवर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सहि समाए सरवर मैं हंस हंस मैं सागर अकथ कथा गुरबचनी आदर सुन मंडलिक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे त्रिभवन जोत रहे लिव लाई।

जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद कहो जे मनपति आए साचे निर्मल मैल न लागै गुर कै शब्द भरम पौ भागै सूरत मूर्त आद्यानूप नानक जाचै साहि स्वरूप तनासरी महला पहला।

दुर्योधन से पाई, बारह जो जन शत्र चला था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खन में पई पराई, दुर्भाषा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जने अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटाओ, जो माया न लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देओ बाहर क्या भरमो, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, ज्यों कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ, ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यों तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डिठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा रहा।

उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुनरे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारणा पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारह सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तुही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो करमरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कुल जन मध्य मिलियो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीट सरी, विश्व का दीपक स्वामी, तांचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ तांचे बादवा। कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी। तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पारदी, कर्म कर कपाल मफीट सरी। अमृत ससी तेन लक्ष्मी, कल्प तार शिखर सुनागर नदी चे नाथं। कर्म कर खार मफीटसरी, दादी ले लंका गढ़, ओ पाड़ी ले रावण बाण, सल बिसाले आण तोखी ले हरी। कर्म कर कशौटी मफीटसरी, पूर्ब लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहण। ताचे मोहे जापी अले राम चे रामं, बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति। मंगला

हर हर नाम दयाल ते आहाओ, हर कै रंग सदा गुण गाहाओ, हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंग ओ महाराम, आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लै लाहा, हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिलिया हरिओ महाराम, कर कीर्तो जस अगमाथा, खिर खिन राम नाम गावा, मोको तार कृपा मिलिया गुरदाते, हर नानक भगत्यो महाराम, जय श्री महला चौथा, रस रस राम रसार सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा, खिन खिन भगत करै दिन राती, गुरमत भगत्यो महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा, गुरमत पंच दूत वासे आवै, मन तन हरि ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा लैलाहा, दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम ओ महाराम, जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगना जगलाहा, तन तन वड्डे ठाकर प्रभ मेरे, जप नानक भगत्यो महाराम, जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा, आपे ही आप वरत है, आपे नामो महाराम, आपे दीप लोभ दीपाहा, आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे मथ मत अत कढ़ाए, जप नाम रतन ओ महाराम, सखी मिलाओ मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नामो महाराम, आपे वरदाना वरसाहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा, हर हर दात करो प्रभावै, गुण नानक नामो महाराम, जैत सरी महला चौथा, मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वे साहा, हर हर कृपा तार मधसूदन, मिल सत संग ओ महाराम, हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा, गुण गावै गुण बोलै बाणी, हर गुण जपियो महाराम, सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम न पुजै पुजाहा, हर हर अतुल तोलत भारी, गुरमत जपियो महाराम, सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किल विख मैल